30 अगस्त सामिन, आज हम 30 अगस्त यौम फ़तेह मना रहे हैं। ये तुर्की की तारीख का वो दिन है जिस दिन जंग निजात फ़तेह से हमकनार हुई। पहली जंग अजीम के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर गैर मुल्की ताकतों के कब्जे के बाद यूनान ने भी अनातोलिया पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। ये जंग कई वर्ष तक जारी रही। जंग आज़ादी का आखिरी मरहला 30 अगस्त 1922 के माशकुमानदान मुहारबे में हासिल होने वाली अजीम फतेह थी। इस फतेह ने आज़ाद जमहूरिया तुर्की के कयाम की राह हमवार की। आज के दिन हम अपनी आज़ादी की जमानत, अपने बहादुर फौज और अपनी अजीम कौम को 30 अगस्त यौम फतेह की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम इन अजीम अबाओ अजदाद को भी इंतहाई एहतराम, तशक्कुर और अकीदत के साथ याद करते हैं, जिन्होंने इस मुकद्दस फतेह के हसूल में किरदार अदा किया, अपना खून और पसीना बहाया और ये खूबसूरत वतन हमारे लिए वर्से में छोड़ा। अल्लाह ताला हमारे इन अजीम शहदा और असलाफ पर अपनी रहमतें नाजल फरमाए। आमीन।

अंगूर तोड़ने, बुवाई और जौ की कटाई जैसे कामों के नामों से याद किया जाता था। तकरीबन 3000 साल पुराना वक्त का यह रिकॉर्ड इस जुग्राफी में यह जाहिर करने वाले कदीम तरीन दस्तावेजात में से एक है कि वक्त को ज़मीन की रफ़्तार के साथ कैसे जोड़ा गया था। इस मकाम पर एक मानी खेज रिश्ता सामने आता है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर आज तक पहुंचने वाले कदीम तरीन तहरीरी रिकॉर्ड में से एक आज इस्तांबुल के आसार कदीमा के अजायब घर में महफूज है। फिलिस्तीन में पत्थर पर तराशा गया वक्त आज इस्तांबुल में अपनी हिफाजत का सफर जारी रखे हुए है। वक्त के साथ इंसान का रिश्ता बतदरीज ज़्यादा दुरुस्त हिसाब किताब पर मबनी जहत में मुंतकिल हो गया। जैसे जैसे सूरज की हरकत का मुतालया किया गया, आसमां को रियाजी के उसूलों के तहत नापा जाने लगा। अलकुद्स में वक्त ज़िरात के साथ साथ अकीदे का भी एक बुनियादी हिस्सा बन गया। इस्लामी तहजीब में नमाज के अवकात के तायुन के लिए आसमां का मुतालया करने से मुवक्कत के पेशे ने जन्म लिया। वो वक्त के मुहाफिज थे जो सूरज की पोजीशन, साए की लंबाई और मौसमों की तब्दीली का हिसाब लगाकर औकात के दुरुस्त तायुन में मदद करते थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन में कायम मुवक्कत खानों में इस्तरलाब और फलकियाती जुदूलों के जरिए सूरज के जावियों का हिसाब लगाया। अलकुद्स में वक्त महज मुशाहिदे से आगे बढ़कर एक ऐसा इल्म बन गया जिसका हिसाब लगाया जाता था और जो जिंदगी को मुनज़्ज़म करता था। वक्त के साथ साथ शहर बड़े हुए, तिजारत ने तरक्की की और नकलो हमल के नेटवर्क कायम हुए। यूँ वक्त आसमां से उतरकर शहर के चौकों में आ गया। 19वीं सदी के आखिर में उस्मानी सल्तनत के जुग्राफिया में उभरने वाले क्लॉक टावर्स फ़िलिस्तीन में भी देखे गए। नाबलुस, याफा, हाइफा, अका, नासरा, सफद और अलकुद्स में तामिर किए गए टावर्स वक्त के नए तसव्वुर की अलामत बन गए। ख़ास तौर पर सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के अहद हुकूमत के 25वें साल के मौके पर उठने वाली ये इमारतें फ़िलिस्तीनी शहरों में वक्त के इस नए फहम को मुजस्सम करती हैं। नाबलुस में 1901 का क्लॉक टावर उसकी सबसे जिंदा मिसालों में से है। अब इनफरादी मुशाहिदात की जगह चौक में मौजूद मुश्तरक घड़ी ने ले ली थी। ताजिर अपनी दुकान उसके मुताबिक खोलता था और शहर के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उस रफ्तार के मुताबिक ढालते थे। नाबलिस का क्लॉक टावर एक सदी से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद शहर के हाफिजे को अपने अंदर समोए हुए है। अलकुद्स में भी ऐसी ही तब्दीली आई। बाबुल खलील के करीब तामिर किया गया उस्मानी क्लॉक टावर उन मकामात में से एक था जहां शहर का तारुफ मैकेनिकल वक्त से हुआ। तारीख हमें एक नाकाबले फरामोश सबक देती है। वक्त की मशीनरी रुक सकती है, उसके पुर्जे उतारे जा सकते हैं और टावर्स को ज़मीन बोस किया जा सकता है, लेकिन किसी माशरे के मुश्तरका हाफजे में नक्श होने वाले वक्त को मिटाना आसान नहीं है। बरतानवी मैंडेट के दौर में गिराया जाने वाला कुछ का क्लॉक टावर अगरचे जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिस शहरी शऊर की वो नुमाइंदगी करता था वो अलकुद्स की यादों में आज भी जिंदा है। साइंस से क्लॉक टावर तक फैले हुए इस सफ़र में अगरचे ज़राए बदल गए, लेकिन वक्त को समझने की इंसानी ज़रूरत वही रही। वक्त एक किसान के लिए बारिश है, एक मुसलमान के लिए इबादत का वक्त है, एक ताजर के लिए दुकान खुलने का वक्त है और एक शहर के लिए मुश्तरका ज़िंदगी की रफ़्तार है। वक्त एक ऐसा आईना है जो ये दिखाता है कि कोई मुआशरा कब काम करता है, कब रुकता है, ज़मीन में बीज कब डालता है और मुस्तकबिल को क्या मुंतकिल करना चाहता है। जजर कैलेंडर से लेकर मस्जिद अक्सा के मौक़ितीन और नाबलिस के क्लॉक टावर तक फैले ये तमाम निशानात इंसान की अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश का खुलासा पेश करते हैं। तो सामईन, वक्त को नापना सीखने वाले इंसान ने इल्म को कैसे महफूज किया, पत्थरों, चमड़े और पपायरस पर लिखे गए मितन सदियों तक गारों और सहराओं में कैसे महफूज रहे, हमारे अगले प्रोग्राम में सहरा के खामोश दानश्वर के उन्वान के तहत हम इल्म और पहली खानकाहों के निशानात तलाश करेंगे। आइंदा हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।

अब तो यह सिलसिला जाहिर करता है कि अंकारा 2019 से 2020 के दौर के वाज़े मगरबी लीबिया के झुकाव से निकलकर एक ऐसी जामे हिकमत अमली की तरफ मुंतकिल हो चुका है जो मुल्क के दोनों सियासी और हिफाजती खितों के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम करती है। और लीबिया से लेकर हॉर्न अफ्रीका तक फैली हुई बहरानी लाइनों पर सफारती मुज़ाकरात को मजबूत बनाती है। और शाम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तज़िया पेश खिदमत है। इस दौरे का वक्त भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिदान के लीबिया के रबते इन दिनों में हुए जब दारुलकूमत त्राबलस के मगरब में वाक़ जाविया में तेल और बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले हुए थे और बेनगाज़ी में एक आला फौजी अहलकार की हलाकत का बायस बनने वाला बम धमाका भी हुआ था। लिहाजा अंकारा का वाहिद लीबिया का नज़रिया सिर्फ सियासी इदारों को मुत्तहिद करने का मामला नहीं है बल्कि यह तवानाई के बुनियादी ढांचे के तहफ़ मुसल्ह ग्रोहों की निगरानी और मशरक़ी और मगरबी हिफाजती ढांचों के दरमियान कम अज़ कम हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत से भी बराह रास्त जुड़ गया है। यह कहा जा सकता है कि त्राबलस और बेनगाज़ी दोनों में तुर्की के मवासलाती चैनल्स ने लीबिया के बहरान में सालसी के दायरे कार को वसी कर दिया है। लीबिया के फौरन बाद मिस्र का रुख करने से न सिर्फ इस पॉलिसी का इलाकाई पहलू नुमाया हुआ बल्कि 7 अगस्त को सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ दस्तखत किए गए मक्का माहदे का इलाकाई अक्स भी सामने आया। अल आलमीन में मुनदा तुर्की मिस्र मुश्तरका मनसूबा बंदी ग्रुप के अजलास में दो तरफा इकतसादी एजेंडे के साथ साथ लीबिया सूडान और सोमालिया जैसे अफ्रीकी ममालिक के मामला नुमाया रहे। मिस्र का इसी इजलास में तुर्की और अफ्रीकी साहली ममालिक के दरमियान नकलो हमल के राबतों को मजबूत बनाने की मुफाहमत की याददाश्त में शामिल होना जाहिर करता है कि अंकारा काहिरा कुर्बत ने सिर्फ बहरान के इंतजाम का रुख इख्तियार नहीं किया बल्कि अफ्रीका तक फैले जोग्राफियाई इकतसादी राबतों का तनाजुर भी हासिल कर लिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत मिस्र तुर्की के लिए बहरा रूम को बहरा अहमर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लाइन से जोड़ने वाला एक अहम शराकत दार बन चुका है। सूडान में इस नई हमआहंगी के सबसे अहम इम्तहानात में से एक हो सकता है। मिस्र सूडान की इलाकाई सालमियत और रियासती इदारों के तहफ्फुज को अपनी कौमी सलामती से बराह रास्त जोड़ता है और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की पेशकदमी के खिलाफ सख्त लाइन पर अमल पैरा है। मजीद बरआं यह जंग लीबिया के मशरक से भी जुड़ी हुई है। ताहम लीबिया के जनूब में मौजूद सिक्योरिटी के खला को सूडान की जंग से अलग करना अब मुश्किल होता जा रहा है। काहिरा के साथ साथ अंकारा की जानिब से बेनगाज़ी के साथ कायम किए गए राबते इस सरहद पार सिक्योरिटी मसावात में नतीजा खेज नए सफारती चैनल्स खोल सकते हैं। इसके अलावा सूडान की जंग लीबिया के मामले को सिर्फ सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से मुतासर नहीं करती। जून 2026 में मशरक़ी लीबिया की इंतजामिया की जानिब से सूडान एरीट्रिया एथोपिया और सोमालिया के शहरियों के दाखिले पर पाबंदियों ने यह दिखाया कि सब सहारन अफ्रीका में जंगें और इकतसादी कमजोरियां लीबिया के रास्ते बहरा रूम के हिजरत के रास्तों पर कैसे मुंतकिल हो रही हैं। सूडानियों का लीबिया में तारकिन वतन और पनाहगुज़ीनों का सबसे बड़े ग्रुपों में से एक बनना इस बात की अलामत है कि त्राबलस और बेनगाज़ी में अदम इस्तेहकाम मिस्र की सरहद की हिफाजत और यूरोप की तरफ गैर कानूनी हिजरत के दबाव को भी मुतासिर कर सकता है। इस तरह लीबिया का इस्तेहकाम सूडान की जंग और बहरा रूम की सलामती एक ही तजवीराती जंजीर के हिस्से बन जाते हैं। सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसी तरह अंकारा काहिरा तआवुन और मुसाबिकत का एक मुश्तरक मैदान है। मिस्र ने 2026 में ऑसूम के फ्रेमवर्क के तहत सोमालिया में फौज और फिजाई दस्ते तैनात करने का ऐलान किया है जबकि तुर्की सोमालिया में दिफा समंदरी सलामती और तवानाई के शोबों में मजबूत मौजूदगी रखता है। दोनों ममालिक सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की बुनियाद पर मुश्तरक मफादात का पस मंज़र भी रखते हैं। इसी वजह से लीबिया मिस्र की लाइन पर फिदान की पे दर पे सफारतकारी तुर्की की अफ्रीकी पॉलिसी में दो तरफा शराकत दारी से इलाकाई बहरानों की हम आहंगी की तरफ पैमाने की तब्दीली की निशानदही करती है। लीबिया में फरीकैन के दरमियान पुल बनना, सूडान में मिस्र के साथ मुतवाजन अंदाज में हम आहंगी पैदा करना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काहिरा और अदीस अबाबा के दरमियान मुतलक मुसाबिकत में फंसे बगैर अफ्रीकी बहरानों का इंतजाम करना एक ज्यादा बाज़ाब्ता इलाकाई तरीक़ाकार में तब्दील हो सकता है। इस लिहाज से ये दौरे न सिर्फ सिफारती सरगर्मी को जाहिर करते हैं बल्कि इस बात का भी सबूत हैं कि तुर्की ने शुमाली अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान जियो पोलिटिकल रबतों को एक ही स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत देखना